तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुरु ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पुरब सदा दशहरा। और नाम हर

गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मजना। साचन लागे मैल क्या मल धोइए, गुणे हार परोए किस क्यों रोइए। विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवै, आप पारस परम ध्यानी साच साचे पावे। आनंद आंदन हरख साचा दुख किल विख पर हरे, सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने। संगत मीत मिलावन पूरा नावनो, गावे गावन हार शब्द सुहावनो। सलाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते, फिर संग भावे सहज नावे बेणी ता संगम सत सते। अराध एक अंकार साचा नित दे चढ़े सवाया, गत संग मीता सत संगत कर नदर मेल मलाया। कहन कहे सब कोए केवड़ आखी है, हो मूर्ख मुगद निचान हो मूर्ख मुगद अजान। समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत भाखी, तित मन मानिया मेरा कूच करे आवे बिखला दे। शब्द सचे गुर मेरा आखण तोट न भगत भंडारी, भर पुर रहा सोई नानक साच कहे बेनंती। मन मांजे सच सोई आखण तोट न भगत भंडारी, भर पुर

0: तुल न होवनी जेत समनो न विसरै।
1: अंत न सिमती कहना अंत, अंत न करने देना अंत,
0: अंत न वेखन सुनना न अंत, अंत न जापे क्या मन।

0: एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान
1: जेब तिस पावे तिवे चलावे जेब होवे फरमान
0: ओहो वेखे उन्ना नदर न आवे बहुता एहो बिडान
1: आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेस
0: सुन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एक वार
1: कर कर वेखे सिरजन हार नानक सच्चे की साची कार
0: आदेश से आदेश आद नील नाद नाहत चुग चुग एको वेस
1: एक दो जीबो लख होवे लख होवे लख वीस
0: लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश
1: एत राह पत पवड़िया चढ़िए होए अकीस
0: सुन गला आकाश की कीटा आई रीस
1: नानक नदरी पाई

0: ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह जाप श्री मुख वाक पातशाह दसवीं छपे संत प्रसाद चक्र चैन और वर्ण जात और पात नहन जे
1: रूप रंगर रेख पे को कह ना सकत कहे
0: अचल मूरत तन भाव प्रकाशम तोज कही जय
1: कोट इंद्र इंद्रान साहू साहन गणिजे
0: तर पवन मिही सुर नर असुर नेत नेत बन तन कहत
1: तब सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत पुचंग पयात छंद नमस्तंगा पेखे नमस्तंगा लेखे नमस्तंगा काये नमस्तंगा जाये नमस्तंगा कर्मंग नमस्तंगा धर्मंग नमस्तंगा नामंग नमस्तंगा तामंग
0: नमस्तंगा जीते नमस्तंगा पीते नमस्तंगा बाहे नमस्तंगा ताहे
1: नमस्तंगा नीले नमस्तंगा नाते नमस्तंगा शेते नमस्तंगा गाते
0: नमस्तंगा गंजे नमस्तंगा भंजे नमस्तंगा दारे नमस्तंगा पारे
1: नमस्तंगा सुएके नमस्तंगा नेके नमस्तंगा भूते नमस्तंगा जूपे
0: नमस्तंगा कर्मे नमस्तंगा परमे नमस्तंगा निर्देशे नमस्तंगा निर्पेशे
1: नमस्तंगा निर्नामे नमस्तंगा निर्कामे नमस्तंग
0: निर्ताते नमस्तंग निर्गाते नमस्तंग तूते नमस्तंग पूते
1: नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग थापे नमस्तंग तिर्माने नमस्तंग निर्धाने
0: नमस्तंग वाहे नमस्तंग दरवर्गे नमस्तंग सर्गे
1: नमस्तंग परभोगे नमस्तंग सजोगे नमस्तंग रंगे नमस्तंग भंगे
0: नमस्तंग गामे नमस्त श्रमे नमस्तंग जलाश्री नमस्तंग निराश्री
1: नमस्तंग जाते नमस्तंग पाते नमस्तंग मजवे नमस्त
0: सजवे देशे नमस्तंग पेशे नमस्तंग तामे नमस्तंग बामे
1: नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे
0: नमो सर्व थापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले
1: नमस्तस्त देवे नमस्तंग पेवे नमस्तंग जन्मे नमस्तंग सुमनमे
0: नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे
1: नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तंग बरने नमस्तंग मरने
0: नमस्तंग दरार नमस्तंग तार नमो सर्व बंदे नमो स्तव बंदे
1: नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्बाके नमस्तंग रहिमे नमस्तंग करिमे
0: नमस्तंग नन्ते नमस्तंग महान्ते नमस्तंग स्त्रागे नमस्तंग सुहागे
1: नमो सर्व सोखंग नमो सर्व भोखंग नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता
0: नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले
1: चाचरी शंख व प्रसाद
0: रूप अनूप जूह पूह
1: अलेख है अपेख है नाम है अकाम है
0: अजीत है अजीत है पीत है
1: निर्माण है निधान है तर्वर्ग है असर्ग है
0: नीला नाद है जी है जाद है
1: जन्म है वर्ण है भूत है अपर्ण है
0: भांजा

0: चक्कर बकर फिरे चतुर चक मानहिं पुर दीन।
1: दो चौदह के बखर जग जाप जे जाप।
0: आंदे बनाद मूर थाप्यो सबे जय थाप। अरे
1: मूर्त मूर्त पूर्ण पुरख अपार।
0: सर्व विश्व प्रचयो सियंभव गण पंजन
1: हार। कालन कलासन जगत काल पुरख देश।
0: धर्मधाम सुपरम रहत पूते अलख बेस।
1: ग्राग नरंग जाके जात पातन नाम।
0: गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम।
1: आप भूमि कान औषधिक पुरख अवधूत।
0: गर्भ गंजन सर्व पंजन
1: आत्मिक पुरख अपार।
0: सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रकार।
1: सर्व घंता सर्वंता सर्व तेन पीख।
0: सर्व शास्त्र न जाने ही जय रूप रंग रेख।
1: जाके नित भगत नित
0: ओट सिमरत प्राण।

0: सर्वान्ता सर्वंगान्ता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता
1: सर्वंगहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राणिः
0: सर्वंकर्मं सर्वंधर्मं सर्वंयोगता सर्वंमुक्ता
1: सावल शांतवैप्रसाद
0: नरकनाशी सदैवं प्रकाशयन्नङ्गं स्वरूपेऽपङ्गं विभूते
1: परमातं परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाध विभूते नंगी
0: नामी त्रपंगी त्रकाम नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
1: न पुत्र न पुत्र न

0: समस्तल वृणा सिंह अंजल नाम समस्तल निवासी
1: कामंग बैपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी
0: सदा सत्ता नंग प्रणासी करमुल कुनिंदा समस्तल निवासी।

0: को हमारी सकल प्रजा जन आप सुवारी
1: सुख दियो
0: सतन को अंतर की जानत भले बुरे की पीर पिछानत
1: कृपा
0: दुखी सुख पाए साधन के सुखी
1: एक एक की पीर पिछाने कट कट के पट पट की जाओ
0: कर करा कर तारा प्रजा तर तब दे अपारा
1: जबा करख करत हो कब हो तुम मैं मिलत देह तर
0: सब बंसरट सब धारा अपनी बूझ उचार
1: सभी दे रहत निरालम जानत भेद भेद अर
0: आलम का निरवकार निरलाम बाद नीला नाद संभ
1: का मूड चारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा साधु
0: कर पाहन अनुमानत महा मूड कछ भेद न जानत
1: महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न
0: भेदा जिति वरणत भिन्न भिन्न तुहि तेती
1: कुमराल खा न जाए पसारा के वे सजा प्रथम संसार
0: अनूप स्वरूपा रंक भैराव कई भूपा
1: अंडर जैसे जचकीनी उत्पज खान बहोरा
0: से राजा हो बैठा कौ सिमट पयो शंकर कैठा

0: माया
1: सड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया
0: माया जित हर विसरै मोह जय पाओ दूजा लाया
1: ज्ञान गुरु प्रसादी जना लिव लागी तनी विचे माया पाया
0: हर आप मुलक है मुल न पाया जाए
1: ना पाया जाए किसे भेटो रहे लोक बिल लाए
0: ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर सौपिए बिचो आप जाए
1: जब जीव तस मिल रहर वस मन आए
0: आप मुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पल्ले पाए
1: हर रास मेरी मन बन जा रहा हर रास मेरी मन बन जा रहा सतगुरु ते रास जानी
0: हर हर नित जपियो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी
1: जो तंत ना मिलिया जिन हर आपे पाना
0: नानक हर रास मेरी मन हो आवन जा
1: रहा तेरा सना तू अंड रस रात रही तेरी प्यास ना जाए
0: प्यास न जाए हो तो कितै जिन चर हर रस पल्ले
1: हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बौड़न तृष्णा लागे आए
0: हर रस कर्मी पाइए सतगुर मिले जिस आए
1: नानक हो रंड रस विसरी जाहर वसे मन आए
0: ए श्रीरा मेरिया हर तू मह जोत रखी ता तू जग में आया
1: हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया
0: हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया
1: गुरु प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया
0: कहे नानक सिस का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में
1: मन
0: आया
1: मन चाओ पया प्रभागम सुने हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया
0: गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे
1: चरण लागे दिन सुभागी अपना पर जापे
0: अनहद बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो
1: है नानक प्रभु आप मिलिया करण कारण जोगू
0: ए श्री राम मेरिया इस जग में आई के क्या तुद कर्म कमाया
1: कर्म कमाया तो श्री राजा तू जग में आया
0: जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न बसाया
1: गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया
0: नानक हो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से जित लाया
1: तेरे नेत्र मेरे हर तुम मैं जो तरी हर बिन अवरण देखो कोई
0: हर बिन अवरण देखो कोई नदरी हर निहालिया
1: वे संसार तुम देख दे हो हर का रूप हर रूप नदरी आया
0: गुरु प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवरण कोई
1: कहे नानक नेत्र अंध सी सतगुरु मिले जब दृष्ट हुई
0: ए सर्वनो मेरे हो सचे सुनने नो पठाए
1: सचे सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत
0: जित जुम्ति मन तन हरिया हुआ रसना रस समानी।

तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, तीर्थ नावन जाऊं तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुण ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पुरब सदा।

गात संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया। कहन कह सब कोई के वड़े आखी है, हौ मूर्ख नीच अजान समझा साखी है। सतगुर की साखी अमृत पाखी तत मन मानिया मेरा। कूच करें आवै बिखला दे शब्द सच्चै गुर मेरा। आखन तोट ना भगत भंडारी भरपुर रहया सोई। नानक साज कह बेनंती मन मांजै सच सोई। आखन तोट ना भगत भंडारी भरपुर रहया सोई। नानक साच कह बेनंती मन मांजै।

अणु जतन करया तुनि द्रव हर दरगे को कैसे गावे आपस को जो पला कहावे तिसे पलाई निकन आवे सर्व गिरिन जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए।

संत के दुखना सुख ते तरे, संत के दुखी को नाही ठाओ, नानक संत भाव तल मिलाए, संत का दुखी यद बीते टूटे, संत का दुखी किते काज न पहुँचे, संत के दुखी को ध्यान फरमाई, संत का दुखी उजड़ भाई, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृत की लोथा, संत के दुखी की जड़ किचनाए, आपन बीजा पे खाए, संत के दुखी कौर न राखन हार, नानक संत भाव तले उभार, संत का दुखी उम्बिल लाए, जो जल बिहुन मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, जो पावक इद नहीं त्रापे, संत का दुखी चुटे अकेला, जो बुआड़ तिलखी तुमाए दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुख सद मिथ्या कैत, कीर्तन का तुरहि भया, नानक ज्योति सुभावे सोए थे, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत का दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरण जवाइए, संत के दुखी पूजन आस, संत का दुखड़ चले निराशा,

उनकी सेवा सोई लागे, जिसनों कृपा करे बड़ भागे। नाम जपत पा विश्राम, नानक तिन प्रभु को उत्तम करमान। जो कुछ करे सो प्रभु के रंग, सदा सदा से हर संग। सह सुभाए होए सो होए, करण हर बजाण सोए। प्रभु का किया जन मीट लगन, जैसा सा सत तैसा दिष्टान। जिस देव जेत समाए समाए, सुखन दान उन्हों बने आए। आप सुखो आप दीनो मानो, नानक प्रभु जाने को जान। सलोक

निमित्त नाय सकल देव हरे वो गाय पिता पंजन को जाने पो सकल प्रोय अपने सो सुमत के अंत अंजन दे अंजन दास नाम ते आवे स तकन मैं जा को फरमाए जन्म रे फिर आवे जाय ऊच नहीं दिस के स्थान जै सजन आवे तासा नानक जान नाना जुमरा नाना रूप नाना जाके रंग नाना विक्रय रंग नाना विघ्न विस्तार परुणासी एक ओंकार नाना जल करे फिन माए पूर पूर्ण सब उठाए नाना विध कर बनत बनाए अपनी कीमत आपे पाए सब घट दिसके सब दिसके ठाव जप जप जी नानक नाम नाम कतारे सगले जंत नाम कतारे खंड ब्रह्मांड नाम कतारे समृद्ध वेद पुराण नाम कतारे सुनुगे अंत्या नाम कतारे जगा सुधार नाम कतारे सगले कार नाम कतारे पुरी सभावन नाम कसंग पुर संसरण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनक दिपाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतु सत सत जाकी बाणी सत पुरख समाय समान सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करणी निर्मल निर्मली जिस जाय तिस सत फली सतनाम प्रभु का सुख दाय विश्वास सत नाम गुरु ते भाय सत भजन सत उपदेश सत तेजन जाकर दे प्रवेश सत निरत बुझे कोय नाम जब ताकीगत होय आप साधकियां सब साधे आपे जाने अपनी मित गा जिसके सिर सुकरण हार है उन बूझ करते विचार करते किमित न जाने की है नानक ज्योति स्वभाव शोरती है विषम विषम पर विषमा जिन को जय दे सहाय स्वाद प्रभु के रंग राज जन लय गुर के भजन पदार्थ लय कोई दाते दू काट न हार जा के तंग सरे संसार जिन का सेव सोड़ भागी जन के संग लिवलाग गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक कुल पावे श्लोक आदि सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अशबरी चरण सा सद प्रसनहार पूजा सा सा से उदार दर्शन सा सद विखनहार नाम सा सा दया नहार आप सा सा सब तारी आपे गुण आपे गुणकार शब्द सद सद प्रवक्ता सुरत सा सा जस बुजनहार को सा सब होए नानक सा सद प्रस होए सास रूप दे मान्या करण कराम दिन मूल पछाने जाकर दे विश्वास प्रवाय तत् ज्ञान तिस मन पकड़ाया पैते निर्भय वसाना जिस तब जय ते समाय समान वस्त माय ले वस्त गढ़ाई ता को बिन कह न जाए बुझे बुझन हर विवेक नारायण मिल नानक ठाकुर का सेवक आज्ञा कारी ठाकुर का सेवक सदा बुजार ठाकुर के सेवक मन प्रति ठाकुर के सेवक निर्मरी ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम करम सेवक प्रभु पालन हरा सेवक की राख निरंकार सो सेवक जिसे प्रभु तारे नानक सो सेवक सा सा समार अपने जन का परदा टाके अपने सेव के सर पर आके अपने दास को देव डे अपने सेव को नाम जपाए अपने सेव की आपद राखे ताकि कदम कोई न लाख प्रभु के सेव को गुण पहुंचे प्रभु के सेव को ते उचे जो प्रभु अपनी सेवा लाए आ नानक सो सेव दास जिस पर टाए निकी गिरी न कल राखे पसम करे लस्कर को लाख इसका सास न काटते आप ता को राख देकर हाथ मन जतन कर तो बात इसके करते बिरथे जात मार न राखे और न कोय सर्व जिया कर राख सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नाम करोड़ कुड़ानी बारंबार बार प्रभु जी पिए पिय अमृत मतंत्र पिए नाम रतन जिन गुरु कपाए तिसके शरण ने दर्शाए नाम तन नाम रूप रंग नाम उस करण का संग नाम राज जो तंत्र ताने मन तन नामे नाम सुमाने उठ बैठ सोत नाम को नानक जन के सदकाम बोलो जज वादन राज प्रभु ने जन की नीजा करे भगत आत्म के जाए प्रभु ने सूर समाय जूहो आव सुजाने प्रभु ने कौ पछाने तिसकी मैम कौन बखानो तिसका गुण कह न जान आठ पर हजूर है कहो नानक जिन पूरे मन मेरे तिनकी उड़ले मन तन बना तिन जन दे जिन जाने अपना प्रभु छाता सुजन सर्व तो का दाता तिसकी शरण सर्व सुख भाव तिसके दर्श पा मिटा और से अनु सगली चाड़ती जन की तू सेवा ला गया अन जन हुई देर नानक तिस जन के पूजो सतपर सलोक सतपुरख जन जाने सतगुर तिसका नाव तिसकै संग से गुदरे नानक हर गुण गाओ सदि सतगुर से की कर प्रतपा से ओको गुरसा दया सिक्की गुर दुरमत मल रहे गुरु बचनी हर नाम चरे सतगुर सिक्के बंधन काटे गुर का सिख भी करते हटे सतगुर सिखो नाम तंद गुर का सिख बड़ भागी है सतगुर सिखा उत्पल सवार नानक सतगुर सिखो जी नाल समारे गुर के ग्रह से उगजो रहे गुर की आगे मन में सह आपस को कृष्ण जनावे हर हर नाम दे साते आवे मन बेचे सतगुरु के पास ते सेवक के कार्य रास सेवा करतो हे नेकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा से आप करे नानक सो सेवक गुरु की मत ले
ਵਿਸ਼ਵ ਸੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਸੋ ਸੇਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ।

करण कारण सुप्रभ सम्राथ दृढ़ कर गहो न मारवात एतन संजो भगवंत संजना का निर्मल मान एक आस राखो मन माए सर्व रोग नानक मिट जाए जिस धन को चार गुण उड़तावे सो धन हर सेवा ते पावे जिस सुकुण ते बाचे में सो सुख साधु संग करे जिस उबा को करे फल करणे सासु वज्र की शरण अनुगुवा ही रोग न जाए रोग मुड़िया खुद लाए सर्व निधान में हर नाम निधान जब नानक दरगे प्रवान मन प्रभु दो हर के नाए दा जिस ताप ते आवे ठाए ता को विघन लागे कोई जा कर दिवसे अरसोए कल ताती ठंडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाव पवन से पूर्ण हे आस भगत पाया तुम प्रवास तिल घर जाए बसे वनासी कहो नानक काटी बस तत विचार कह जन साचा जन्म मरे सो का चो काच आवागन मटे प्रभ से व्याप्त अक्षम गुरुदेव यों रतन जन्म का हुए उधार हर हर सुमर प्राण धार अनुगुपाव न छूट न हारे समर सास रे हर की भगत करो मन लाए मन पंचत नानु बल भाए संग न जाल तेरे तन हाथ क्या लपटावे सोत मीत प्रम वरवंत अंते कुं तुम सुना राज रंग मै विस्तार इंते को कुं छुटका अशस्ती रथ सवारी झूठा राम झूठ बजार जिन दिए ते बुजन बिगा नाम सन नानु कुसदान गुरु की मत बले आने भगत न बोडू बेचान हर की भगत करो मन मीत निर्मल हो तुम्हारो चीत चरण कुमण राख मन माए जन्म जन्म के गल जाए आप जपो नाम जपाओ सुनत कह त्रैत कद पाओ सार पुज को नाओ सास भाई नान गुण गाओ गुण गाओ त्रे तुर समाय बिन जाय हम खाए ओह चंद विशेष कुनाओ सात प्रा सर नाम समाव छाड़ सियाण सगली मना सा सुन पावे सच तना हर पूंजी संत करो बिहारियां सूत्र गए जयकार सर्व निरंतर एको दे कहो नानक जा के नगले एको जाप एको साला एक समर एक मन याद एक कसके कुनो गाओ अनंत मन तन जाप एको बंद एको एक ए करया पूर्ण पूर प्रव्याप अनु विस्तार एक ते कई प्राद प्रास्त मन तन अंतरिक गुरु रात गुरु पर साध नानक एक जाता श्लोक फिर फिर प्रभ आया पर तो शरण आए है नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाय स्वय जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देव हर नाम सात जन की मांगो तूर पार में शरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गाओ सास सास प्रभ तुम्हें ते आव चरण कमल से लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक कोटि को धार नानक मांगे नाम प्रसार प्रभ के दुष्मा सुख होए हर सपा विरड़ा कोय जिन चाखिया से जंत्र दान पूर्ण पुरुष ने डोलन सुबर परे प्रेम रस रंग उपजे साहु साध के संग परे शरण सब दया गंतर फिर का संग लाग बड़ भागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम तेज कोय सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निमण तले जन को प्रभ हो दया सेवक सदा निहार मंदन काट मुग जन फया जन मरण दुख पुंगे इस पुनी सरदा सा पूरी रव रहा सा संघा जे जिसका साथ निलया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सोक विसरे जे काल न बने सोक विसरे जे की आ जाने सोक विसरे सब कुछ दिया सोक विसरे जे जीवन जिया सोक विसरे जखन में राख गुरु पर साथ कबर लाला सोक विसरे जे बिखते काटे जन्म जन्म का टूटा काटे गुरपुरे तते भजाय प्रभ अपना नाम तंत्या साजन संत करो ए काम अंत अब जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव आप जपो जपाव भगत पाए त्रिय संसार गिन भक्ति दिन हो शीशार सर्व कल्याण सुखनित नाम बूढ़ो जात पाए विश्राम सगल दुख का नास नानक नाम सुखो गुंतास उपजी प्रीत प्रेम रचाओ मंत्रन त्रे सुभाव नेत्र उपेक दर्श गोए मन विकसे सा चरण धोए भगजन के मंथन रंग बिरड़ा को पावे संग एक बार तीजे करमया गुरु प्रसाद नाम जपले ताकि उमंग न जाए नानक प्रया सर्व समाए प्रभु बख्शन दीन दयाल भक्त सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्वटा कृत प्रतपाल आद गुरु कारण करतार भगजन के प्राण धार जो जो जपै सोय पुनीत भगत पाए लाभ मनहित हम निर्गुण यार नीच जार नानक तुमरी शरण प्रभु गान सर्व वैकुंठ मुक्त मुख पाए किनम करके गुण गाए अनुग्राज भोग उड़े आई हर के नाम की कथा मन भाए
वह भोजन का प्रसंगीत रसना जपति हर हरणी फले सो करणी सो भात नमंत हृदय से पूर्ण गुरुमान सा संग प्रभु निवास सर्व सुख नानक परिगास सलोक।